समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

प्रेमे लालन करीतसे। ती साहित्य शास्त्री झाली कुशळ, नीतिशास्त्र जाणे सकळ, चातुर्यादी गुण विपुल, ती जमा जीव सिन्नले। असो ऐसी ती विप्रकन्या,

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

आजकल बड़े दुख की बात है कि अंतरे का विस्तार भूलते जा रहे हैं लोग। बहुत से लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए कि अंतरे की जरूरत क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद मालूम नहीं है कि सिर्फ शर्ट पहन के निकल जाए तो क्या हालत होगा। संचारी आभोग तो जा चुका है, अंतरे को भी भूलने पे लगे हुए हैं। लेकिन अंतरे की उपज वही गाएगा, वही बजा सकता है जिसको तालीम हो। अस्थाई सब लोग बरत सकते हैं, अंतरा बरतना बहुत मुश्किल है।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।
1: बहुत साचे।

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृश सारथिना त्वयैव यौदर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये मन्मूर्धिकार्यपणे विकटाटवीषु श्री वेंकटादिशिखरे शिरसि श्रुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्यमनसाम् सममाहितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणम्।

श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिनाम मदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिनाम मदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम्।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।